0: प्यार हो गया? प्यार शार कुछ नहीं होता, शादी होगी तो अरेंज।
1: प्यार? ये जिस्म प्यार करना नहीं जानता, जानता है तो सिर्फ भूख, जिस्म की भूख।
2: प्यार यश चोपड़ा के गीत है।
3: प्यार, प्यार इज टू चिल।
4: प्यार अभी बताता हूं।

0: प्यार, प्यार में जिंदगी खूबसूरत लगने लगती है, हर सपना सच लगने लगता है, हर मंजिल बदलने लगती है, हवा का रुख भी बदलने लगता है, रंगों पे नजर पड़ने लगती है, और अब अब लाल रंग भी अच्छा लगने लगता है। हर पल हर पल हमेशा एक ही नाम को तो प्यार है,
1: नैना
2: अमन
0: स्वीट।
3: Yeah.

0: ब्याह शहर कुछ नहीं होता, शादी होगी तो अरेंज्ड।
1: प्यार, ये जिस्म प्यार करना नहीं जानता, जानता है तो सिर्फ भूख, जिस्म की भूख।
2: प्यार यश चोपड़ा के गीत है।
3: प्यार, प्यार इज टू चिल।
4: प्यार अभी बताता हूँ।

0: प्यार, प्यार में जिंदगी खूबसूरत लगने लगती है, हर सपना सच लगने लगता है, हर मंजिल बदलने लगती है, हवा का रुख भी बदलने लगता है, रंगों पे नजर पड़ने लगती है, और अब अब लाल रंग भी अच्छा लगने लगता है। हर पल हर पल हमेशा एक ही नाम को तो प्यार है, नैना
1: अमन
0: स्वीटहार्ट।

0: क्या
1: मैं क्यों बेचैन रहता हूँ?
0: क्यों
1: मेरी इस बेकरारी की वजह क्या है, बता दूँ क्या
0: क्या

0: हेलो एंड वेलकम टू आचार्य 90 FM। मैं आपका होस्ट एंड दोस्त आर्जे शब्बीर स्वागत करता हूँ आपका कहानियों के गुल्लक में। आज हम इस कहानियों के गुल्लक में एक कहानी और डालेंगे और इस कहानियों के गुल्लक को फिर से ज्यादा और भारी करेंगे। आज की कहानी है चार दोस्तों की, चार यार एक दोस्ती जो कभी टूटी नहीं। मुंबई की बारिश का एक अलग ही मूड होता है, कभी रोमांटिक, कभी डिप्रेसिंग और कभी कभी जिंदगी बदल देने वाली। ये कहानी है चार दोस्तों की, आरव, समीर, फैजान और कबीर। चार अलग पर्सनालिटीज, चार अलग सपने, लेकिन एक चीज कॉमन थी, उनकी दोस्ती। वो दोस्ती जो स्कूल के एक ब्रोकन बेंच से शुरू हुई और जिंदगी के सबसे बड़े तूफान तक साथ चली। मुंबई के एक गवर्नमेंट स्कूल का क्लासरूम, टीचर अटेंडेंस ले रही थी। समीर खान प्रेजेंट मैम, कबीर शर्मा प्रेजेंट मैम, आरव मेहता प्रेजेंट मैम, फैजान अली प्रेजेंट। उस वक्त किसी को नहीं पता था कि ये चार नाम एक दिन एक दूसरे की जिंदगी बन जाएंगे। लंच ब्रेक में एक इंसिडेंट हुआ, एक सीनियर बच्चा फैजान का टिफिन ले गया और मजाक उड़ाने लगा, अरे देख बिरयानी वाला आ गया है। पूरा क्लास हंस रहा था, फैजान चुप था। तभी आरव खड़ा हुआ, भाई टिफिन वापस दे दे। सीनियर साहब तू क्या करेगा? आरव ने सीधा उसके हाथ से टिफिन खींच लिया। उस दिन पहली बार समीर और कबीर ने आरव को देखा और समझा कि ये लड़का अलग है। उसके बाद चारों एक बेंच पे बैठने लगे। स्कूल के बाद कटिंग चाय, क्रिकेट, असाइनमेंट्स, मास्क बंक, पनिशमेंट सब साथ में, और धीरे धीरे दोस्ती फैमिली बन गई। लेकिन जैसे कि आप जानते हैं, वक्त बदलता है और वक्त को बदलने में देर नहीं लगती, तो ठीक वैसा इन चारों दोस्तों के साथ भी हुआ। स्कूल खत्म हुआ, कॉलेज स्टार्ट हुआ, लेकिन हर किसी का स्ट्रगल अलग था। आरव मिडिल क्लास फैमिली से था, फादर ऑटो चलाते थे। आरव का सपना था फिल्म मेकर बनने का, लेकिन घर वालों को लगता था फिल्म लाइन में फ्यूचर नहीं है। समीर ब्रिलियंट कोडर, कंप्यूटर का मैजिशियन, लेकिन फाइनेंशियली वीक। कभी कभी इंटरनेट रिचार्ज करने के भी पैसे नहीं होते थे उसके पास। कबीर बड़ा फनी बंदा था, हर सिचुएशन में जोक मार देता लेकिन अंदर से ब्रोकन। उसके पेरेंट्स रोज फाइट जो करते थे, वो बस हंसके सब हाइड करता था। फैजान सिंगर बनना चाहता था, आवाज दिल को छू लेती थी, लेकिन उसके अब्बू चाहते थे कि वो उनकी गैरेज शॉप संभाले। गाने से घर नहीं चलता, ये सेंटेंस उसने हजार बार सुना था। एक रात चारों मरीन ड्राइव पर बैठे थे, बारिश हो रही थी। कबीर बोला, एक प्रॉमिस करते हैं, जब भी लाइफ में कितना भी बड़ा स्ट्रगल आए हम साथ रहेंगे। सबने हैंड्स स्टैक किए, फॉरएवर। उस वक्त किसी को नहीं पता था कि असली टेस्ट अभी बाकी है। कॉलेज के फाइनल ईयर में आरव को एक आइडिया आया, व्हाई डोंट वी स्टार्ट आवर ओन कंटेंट चैनल, शॉर्ट फिल्म्स, म्यूजिक वीडियोस, सोशल मीडिया कंटेंट। समीर टेक्निकल संभाल लेगा, फैजान म्यूजिक संभाल लेगा, कबीर एक्टिंग और स्क्रिप्टिंग कर लेगा, आरव डायरेक्शन। सब एक्साइटेड थे, लेकिन प्रॉब्लम एक थी, पैसे, कैमरा रेंट, लैपटॉप, एडिटिंग सॉफ्टवेयर, ट्रैवल, सब कुछ एक्सपेंसिव था। फिर भी उन्होंने गिव अप नहीं किया। दिन में कॉलेज, रात में काम, दिन में कॉलेज, रात में काम, दिन में कॉलेज, रात में काम। कभी कभी रेलवे स्टेशन पे शूट, कभी स्लम एरिया में, कभी टेरेस पे। उनका पहला वीडियो सिर्फ 312 व्यूज ले पाया, दूसरा 89 और तीसरा तो पूछो ही मत, ओनली 41। कबीर फ्रस्ट्रेटेड हो गया, भाई ये नहीं चलेगा यार। लेकिन आरव बोला, एक दिन चलेगा। फैजान चुप था, उसके घर पे प्रेशर बढ़ रहा था। अब्बू रोज बोलते थे गैरेज ज्वाइन कर ले, लेकिन वो सपना नहीं छोड़ना चाहता था। एक दिन समीर एक कैफे में फ्रीलांस कोडिंग का काम कर रहा था, तभी एक आदमी उसके पास आया, सूट पहना हुआ, एक्सपेंसिव वॉच। तुम समीर हो? हाँ, मैं समीर हूँ। तुम्हारी कोडिंग स्किल्स के बारे में बहुत कुछ सुना है। उस आदमी का नाम था विक्रम मल्होत्रा, एक बिजनेसमैन। उसने ऑफर दिया, एक सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट करना है, काम सिंपल है और उसके तुम्हें मिलेंगे 5 लाख रुपए। 5 लाख चारों के लिए एक काफी ह्यूज अमाउंट था। विदाउट थिंकिंग डीपली उन्होंने प्रोजेक्ट ले लिया। 3 महीने तक नॉनस्टॉप काम हुआ, नो स्लीप, नो पार्टीज, नो फन, बस काम। प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ, पेमेंट भी मिल गई, सब खुश थे। लेकिन एक वीक बाद पुलिस समीर के घर पहुंची।
1: अकेले अकेले

स्वागत है दोस्तों आप सभी का ब्रेक के बाद आचार्य 90 एफएम में। जैसे कि हम सुन रहे थे, चार दोस्त, चारों का एक सपना। एक सपना वो ऐसा लिए आए थे कि एक यूट्यूब चैनल बनाते हैं, उसमें शॉर्ट फिल्म्स, म्यूजिक वीडियोस, कंटेंट क्रिएशन, बहुत सारी चीजें उनके दिमाग में चल रही थी। उन्होंने एक यूट्यूब चैनल भी खोला, लेकिन उनका चैनल बहुत तड़ाक से नीचे गिर चुका। पहला वीडियो 312, दूसरा वीडियो 89 और तीसरे का तो हाल मत पूछो, 41 व्यूज। लेकिन एक जिद थी कि कुछ करना है, तो एक ऑफर मिला जिसमें एक सॉफ्टवेयर बनाना था प्रोजेक्ट, वो बना लिया, उससे 5 लाख रुपए भी कमा लिए। लेकिन पुलिस आ गई थी अब समीर के घर, तो देखते आगे कहानी में क्या होता है। पुलिस समीर के घर पहुंची। समीर खान, हाँ, तुम्हें साइबर केस में अरेस्ट किया जाता है। सब शॉक, क्या तुम्हें साइबर फ्रॉड केस में अरेस्ट किया जा रहा है? जो सॉफ्टवेयर तुमने बनाया था वो इलीगल फाइनेंशियल स्कैम में यूज हुआ है। समीर, फैजान, कबीर, आरव, सब शॉक। विक्रांत ने उन्हें पॉन की तरह यूज किया था। न्यूज चैनल्स पे नाम आ गया, कॉलेज स्टूडेंट्स इन्वॉल्व इन फ्रॉड। फैजान के अब्बू ने थप्पड़ मारा, यही कर रहा है तुम? कबीर के पेरेंट्स ने उसे घर से निकाल दिया। आरव के फादर की तबीयत खराब हो गई स्ट्रेस में। सब टूट गया एक गलती से और पूरी जिंदगी उलट गई, जैसे मानो कभी कुछ था ही नहीं। सब एक पल में उथल पुथल हो गया। चारों दोस्तों की जिंदगी रास्ते पर आ गई। समीर जेल में चला गया, उसकी आंखों में गिल था, वो खुद को कोस रहा था, सब मेरी वजह से हुआ, मैंने सब गलत कर दिया, मुझे वो ऑफर लेना ही नहीं चाहिए था। तबारा बोला, नहीं भाई, हम सब साथ थे। कबीर पहली बार सीरियस था, अब क्या करेंगे? कोई आंसर नहीं था। 3 दिन तक सब होपलेस रहे, फिर एक अनएक्सपेक्टेड कॉल आया, अननोन नंबर, और उस कॉल पे कहा गया, तुम लोगों को फंसाया गया है। वॉइस फीमेल की थी। मैं विक्रांत की एक्स इंप्लॉय हूं, मेरे पास प्रूफ है। सब शॉक थे। उस एक लड़की का नाम था नैना, वो विक्रांत के इलीगल ऑपरेशंस जानती थी, लेकिन वो डर के मारे चुप थी। अब फाइनली वो इन चारों को हेल्प करना चाहती थी। नैना ने बताया, विक्रांत के ऑफिस सर्वर में सब एविडेंस है। समीर बोला, अगर वो डेटा मिल गया तो मैं इनोसेंट प्रूफ हो सकता हूं। प्रॉब्लम, सर्वर हेविली सिक्योर था और विक्रांत डेंजरस आदमी था, लेकिन अब उनके पास भी कोई ऑप्शन नहीं बचा था। अगर समीर को खुद को इनोसेंट प्रूफ करना है तो उसको एविडेंस की जरूरत है। एक रात चारों सीक्रेटली विक्रांत के ओल्ड वेयर हाउस पे गए। रेनी नाइट, डार्क बिल्डिंग, हार्ट बीट फास्ट। कबीर नर्वस था, भाई अगर पकड़े गए तो? फैजान बोला, तो साथ पकड़े जाएंगे। ये लाइन सुनकर सब मुस्कुराए। अब वेयरहाउस पे एकदम काला अंधेरा, सिक्योरिटी टाइट, जगह जगह पे वॉचमैन घूम रहे हैं, लेकिन समीर को इनोसेंट प्रूफ करना था तो ये कदम उनको बढ़ाना ही था। और ये जो सिचुएशन थी इसे फेस करना ही था।
तो चारों ने डिसाइड किया कि भले कुछ भी हो जाए, कुछ भी, अब वो इस मिशन से पीछे नहीं हटेंगे और समीर को इनोसेंट प्रूफ करके रहेंगे। तो दोस्तों, देखा आपने कि कैसे एक दोस्त अगर फंस जाता है तो उसके तीन दोस्त उसे इनोसेंट प्रूफ करने के लिए अपनी जान का जोखिम तक ले लेते हैं। अब इसके आगे वाली कहानी का हिस्सा हम सुनेंगे ब्रेक के बाद।

ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है आचार्य 90 एफएम में। आप सुन रहे थे कहानियों की गुल्लक, जिसमें हम सुना रहे थे चार दोस्तों की कहानी। चार दोस्त अभी विक्रम के ओल्ड वेयरहाउस पे पहुंच चुके थे, लेकिन अंदर ऑफिस में जाने का कोई रास्ता नहीं था। और जाकर ये पता चला कि सारी चीजें वहां पे एकदम सिक्योरिटी पर्पस से बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट है। तो वो वापस आ गए। वापस आने के बाद उन्होंने सोचा कि क्या किया जाए। तो वापस आने के बाद सबसे पहले उन्होंने बनाया एक प्लान कि रात में किस तरीके से विक्रम के पुराने ऑफिस में जाएंगे, समीर किस तरीके से सिस्टम हैक करने लगेगा और कौन

गार्ड्स उनके पीछे भागने लगे। कबीर गिर गया। एक गार्ड उसके पास पहुंच गया लेकिन वापस आरव आ गया। उसे हाथ मत लगाना। फाइट स्टार्ट हो गई। फैजान ने कबीर को उठाया। समीर चिल्लाया, डाटा मिल गया, डाटा मिल गया। लेकिन एग्जिट ब्लॉक, सब कॉर्नर ब्लॉक हो गए थे। उस वक्त कबीर हंसा और बहुत जोर से हंसा। आरव गुस्सा हुआ, पागल है क्या तू? कबीर बोला, भाई स्कूल में प्रॉमिस किया था ना साथ रहेंगे। उस मोमेंट पे उन्हें डर से ज्यादा एक दूसरे पे ट्रस्ट था। लेकिन जैसे कि आप जानते हैं, हम हमारे स्कूल में किए हुए प्रॉमिस को कितना ज्यादा महत्व देते हैं या कितना इम्पोर्टेंट समझते हैं, ये उसी की कहानी चल रही थी। अब दौड़ भाग कर वो वहां से निकल पड़े। फाइनली नैना से ये चारों मिले। नैना ने सीक्रेटली पुलिस को सारे एविडेंस भेज दिए। विक्रम अरेस्ट हो गया। न्यूज चैनल की हेडलाइन बदल गई, यंग स्टूडेंट फ्रेम्ड बाय बिजनेसमैन। समीर फ्री हो गया, चार्जेस ड्रॉप हो गए। लेकिन इमोशनल डैमेज अब भी था। सोसाइटी स्टिल जज देम। लोग विस्प करते हैं, ये वही फ्रॉड वाले लड़के हैं। कबीर डिप्रेस होने लगा था। फैजान ने सिंगिंग छोड़ दी थी। आरव शांत हो गया था। सब फिजिकली फ्री तो थे लेकिन मेंटली ब्रोकन थे। और फिर एक दिन आरव ने ओल्ड हार्ड ड्राइव निकाला। उसमें उनके पुराने वीडियोस थे, मस्ती, लाफ्टर, ड्रीम्स। कबीर स्लोली स्माइल करने लगा। फैजान की आंखों में टीयर्स आ गए। आरव बोला, हमने गलती की लेकिन क्राइम नहीं। हम गिर गए लेकिन खत्म नहीं हुए। समीर ने पूछा, अब क्या? आरव ने स्माइल किया और कहा, अब कम बैक। चारों ने फिर से कंटेंट बनाना स्टार्ट किया लेकिन इस बार फेक ग्लैमर नहीं, रियल स्टोरीज। लोगों के स्ट्रगल्स पर, लोगों की मेंटल हेल्थ पर, फ्रेंडशिप पर, फेलियर पर। उनका कंटेंट अब उनसे ज्यादा लोगों से जुड़ा हुआ था, लोगों की जिंदगी को बताने के लिए जुड़ा हुआ था। लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी को अब वो कैमरा में कैद करने लगे थे, उनकी कहानियों को लोगों के सामने लाने लगे थे। उनका एक पॉडकास्ट इसी तरीके से वायरल हो गया, When Life Frames It, Million of Views। लोग कनेक्ट करने लगे, कमेंट्स भर गए, भाई ये तो मेरी स्टोरी है, रियल फ्रेंडशिप स्टिल एग्जिस्ट, यू गाइस सेव्ड मी। स्लोली स्लोली सब चेंज होने लगा। फैजान का म्यूजिक फेमस होने लगा। समीर को स्टार्टअप जॉब मिली। कबीर स्टैंड अप कॉमेडी करने लगा। आरव डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर बन गया। 10 साल बाद सेम मरीन ड्राइव, सेम बारिश, बस चेहरे मैच्योर हो गए थे। कबीर चाय सिप करते हुए बोला, भाई अगर उस टाइम हम टूट जाते ना तो आज कुछ नहीं होता। फैजान स्माइल्ड, हम प्रॉब्लम में इसलिए नहीं फंसे क्योंकि हम वीक नहीं थे, हम फंसे क्योंकि हम इनएक्सपीरियंस थे। समीर एडेड, लेकिन निकले क्योंकि हम यूनाइटेड थे। आरव ने आसमान की तरफ देखते हुए बोला, दोस्ती का मतलब सिर्फ पार्टी नहीं होती दोस्तों, दोस्ती का मतलब होता है जब पूरी दुनिया तुम्हारे अगेंस्ट हो तब भी कोई तुम्हारे साथ खड़ा रहे। बारिश तेज हो गई। चारों फ्रेंड समंदर के सामने खड़े थे और उनकी फ्रेंडशिप हुई। हर लहर से ज्यादा स्ट्रांग थी उनकी फ्रेंडशिप। कई बार जिंदगी आपको गलत रास्तों पे धकेल देती है लेकिन अगर आपके पास सच्चे दोस्त तो हर अंधेरा छूटने लगता है, हर अंधेरा मिटने लगता है, एक नया सवेरा जरूर आता है, एक नई जिंदगी लेकर, एक नई उम्मीद लेकर, एक नई कहानी लेकर, एक नया दिन लेकर। और वो नई उम्मीद, वो नई किरण हमारी जिंदगी में कब इतनी बड़ी विक्ट्री दे जाती है

कभी कल्पना भी नहीं की। जो वक्त मुश्किल वक्त में साथ नहीं छोड़ते वही दोस्त होते हैं। जो तुम्हें जो तुम्हारे आंसू आने पर तुम्हें हंसाने लगे वही दोस्त होते हैं। जो तुम्हारे साथ चलते हैं वही दोस्त होते हैं। जो तुम्हारे सपने को अपना सपना समझते हैं वही दोस्त होते हैं। जो गिरने पर सर पे टपली मार के उठाया वही दोस्त होते हैं। जो बेवजह बिन बात मजाक उड़ाए वही दोस्त होते हैं। सो ऐसी दोस्तों की सुन रहे थे हम कहानी, और इस कहानी में हमने देखा कि मुसीबत कितनी बड़ी क्यों ना हो पर एक साथ रहकर हर मुसीबत से लड़ा जा सकता है, हर मुसीबत पे काबू पाया जा सकता है, हर बुरे इंसान को हराया जाता है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट है हमारा साथ में रहना, हमारा हमारे दोस्तों को सपोर्ट करना, दोस्तों के साथ खड़े रहना। तो आज की कहानियों की गुल्लक में बस इतना ही। हम दोबारा फिर मिलेंगे आचार्य 90 FM पर। तब तक सुनते रहिए कहानियों की गुल्लक। मैं आपका होस्ट एंड दोस्त आपसे विदा लेता हूँ। बाय।

हेलो एंड वेलकम टू आचार्य 90 FM। मैं आपका होस्ट इंदोष शब्बीर शेख लेके आया हूं आपके लिए कहानियों की गुल्लक। बचपन से हमें हिस्ट्री में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं रहा, पर मैं सच कहूं तो हिस्ट्री मेरा सबसे फेवरेट सब्जेक्ट था। द रीजन बिंग

हस्ती में जो कहानियां या जो किस्से हुए या जो हकीकतें घटी है उनको जानने के लिए मैं हमेशा बेताब रहता। मैं हमेशा जब टीचर्स उन लम्हों को दोहराते तब मैं हमेशा इसी कोशिश में रहता कि वो चीज़ें मेरी आंखों के सामने चले। मैं उन चीज़ों को इमेजिन करने लगता और उन्हीं इमेजिनेशन में से मेरे वन ऑफ द फेवरेट फ्रीडम फाइटर में से एक थे नेताजी सुभाष चंद्र बोस। नेताजी का किरदार इतना अट्रैक्टिव, इतना ऑरा से भरपूर, जैसे नेताजी की बात सुनो या कोई नेताजी की बात करे तो आंखों में एक अलग सी चमक आ जाए। और एल्स यू कुड टेल मी दैट आई वाज वेरी फॉन्ड एंड आई एम स्टिल फॉन्ड ऑफ नेताजी। सो मैं लेके आया हुआ आज एक कहानी नेताजी की, बर्लिन से आजादी तक, बर्लिन से आजाद हिंद सेना तक। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की वो कहानी जहां एक आदमी ने सिर्फ सपना नहीं देखा बल्कि पूरी दुनिया को हिला दिया। 1941 का वक्त था, दुनिया दो हिस्सों में बट चुकी थी, एक तरफ ब्रिटिश एम्पायर, दूसरी तरफ जर्मनी, इटली और जापान, और इन दोनों के बीच एक हिंदुस्तानी खड़ा था, नाम सुभाष चंद्र बोस। लेकिन उस वक्त दुनिया उसे एक और नाम से जानती थी, नेताजी। कोलकाता की एक सर्द रात सुभाष अपने कमरे में अकेले बैठा था, टेबल पर इंडिया का नक्शा पड़ा था, उसके सामने ब्रिटिश ऑफिसर्स की रिपोर्ट्स थी और एक तरफ गांधी जी की स्पीचेस। सुभाष ने धीरे से आंखें बंद की, अहिंसा। वो हल्के से मुस्कुराहट के साथ बोला, अंग्रेज बिना खून बहाए कभी नहीं जाएंगे। उसकी सोच थी, वो मानता था कि आजादी मांगी नहीं जाती, छीननी पड़ती है। उसने इंडियन सिविल सर्विसेज क्लियर की थी, आराम की जिंदगी मिल सकती थी, पावर, रिस्पेक्ट, मनी, सब कुछ मिल सकता था। लेकिन नेताजी ने सब कुछ छोड़ दिया क्योंकि उनके दिल में सिर्फ एक बात थी। वो हमेशा लोगों से कहते, मेरा देश गुलाम है और मैं चैन से कैसे जी सकता हूं। नेताजी के दिल में जो क्रांति थी वो लोग अक्सर सुनते थे, लोगों को अक्सर सुनने मिलता था। नेताजी की आंखों में जो आजादी के लिए एक जोत जलती थी वो हमेशा लोग देख सकते थे उसको। इंडियन नेशनल कांग्रेस के सेशन में सुभाष चंद्र बोस जी को प्रेसिडेंट चुना गया। यंग लोग पागल थे उनके लिए, उनकी स्पीचेस में आग होती थी। वो कहते थे, फ्रीडम इज नॉट गिवन, इट्स टेकन। लोग तालियां बजाते थकते नहीं थे, चीख पड़ते थे, चिल्लाते थे, लेकिन हर कोई खुश नहीं था। कई सीनियर्स लीडर को लगता था कि नेताजी बहुत अग्रेसिव है, उनका अप्रोच काफी डेंजरस है। सबसे बड़ा डिफरेंस ये था कि महात्मा गांधी शांति चाहते थे और नेताजी एक रिवॉल्यूशन। एक मीटिंग में गर्मा गर्मी इतनी बढ़ गई थी कि रूम में सन्नाटा छा गया था। गांधी जी ने कामली कहा, वॉयलेंस हमें आजादी नहीं देगा। नेताजी ने सीधा जवाब दिया, लेकिन स्लेवरी जरूर देती रहेगी। रूम जम गया। वो सिर्फ डिसएग्रीमेंट नहीं था, वो दो लोग अलग फिलोसॉफी का टकराव था, वो दो अलग फिलोसॉफीज का टकराव था। और धीरे धीरे सुभाष चंद्र जी कांग्रेस में अकेले पड़ने लग गए थे। ब्रिटिश गवर्नमेंट को सुभाष जी से, नेताजी से बहुत डर लगने लगा था क्योंकि उनकी स्पीचेस इतनी ज्यादा लोगों में पसंद की जाती थी। लोग उनकी स्पीचेस सुनकर इतने ज्यादा इंडिपेंडेंस के लिए जाग उठते थे, क्रांति के लिए जाग उठते थे। उनके दिल में नेताजी ऐसी बातें करते थे कि लोगों को जोश आ जाता था। 1940 में नेताजी को हाउस अरेस्ट कर लिया गया। हर वक्त पुलिस उन पे नजर रखती थी। चार पुलिस अफसर उनके कमरे के बाहर, 20 से 50 अफसर उनके पूरे घर के बाहर। नेताजी बाहर निकले तो पुलिस ऑफिसर, अंदर जाए तो पुलिस ऑफिसर, हर जगह जैसे उनको मानो सिर्फ ब्रिटिश पुलिस के नजर में ही रखा गया हो। लेकिन ब्रिटिश एक चीज भूल गए थे,
सुभाष चंद्र बोस जी इतने इंटेलिजेंट थे कि जिस तरीके से वो सोच सकते थे उस तरीके से कोई सोच नहीं सकता था। एक रात जनवरी 1941 में घर के अंदर सब सो रहे थे, बाहर गार्ड्स खड़े हुए थे। सुभाष जी ने धीरे से अपनी दादी को टच किया। सुभाष जी ने अपना रूप बदल लिया, एक पठान, लॉन्ग कोट, टोपी और फेक आइडेंटिटी, नेम जियाउद्दीन। रात को अंधेरे में वो घर से निकल गए। गार्ड को लगा कोई नॉर्मल आदमी जा रहा है, और उस रात ब्रिटिश एम्पायर की आंखों के सामने से इंडिया के सबसे डेंजरस रिवॉल्यूशनरी निकल गया। सुभाष जी का मिशन इम्पॉसिबल था, इंडिया से निकलना, ब्रिटिश इंटेलिजेंस से बचना और जर्मनी पहुंचना। फिर वहां सुभाष जी ने बहुत सारे प्लान बनाए। वो कोलकाता से पेशावर गए, फिर अफगानिस्तान गए, फिर सोवियत रूट से हर जगह रुकते हुए हर जगह खतरा मंडराता रहा, पर वो सारी बाधाओं को, सारे खतरे को पार करते हुए निकल पड़े। एक बार अफगानिस्तान में एक आदमी ने उन्हें गौर से देखा, सुभाष जी का दिल तेजी से धड़कने लगा। ये पहचान गया क्या मुझे? आदमी उनके पास आया और धीरे से बोला, आप हिंदुस्तानी हो? सुभाष जी चुप रह गए। आदमी मुस्कुराया, डरो मत, मैं भी अंग्रेजों से नफरत करता हूं। उस रात सुभाष जी को पहली बार एहसास हुआ उनकी लड़ाई सिर्फ अकेली नहीं है, उनके साथ बहुत सारे लोग खड़े हैं, सिर्फ इंडिया से नहीं, बाहर से भी। पूरी दुनिया में लोग ब्रिटिश रूल से नफरत करते थे, ये इस बात का अंदाजा अब सुभाष जी को लग चुका था। और फाइनली सुभाष जी ने जर्मनी में एंट्री ले ली, बर्लिन। स्नोफॉल हो रही थी, नाजिस का रूल, हर जगह सिर्फ मिलिट्री, स्वस्तिका वाले फ्लैग्स। सुभाष जी कार से उतरकर धीरे धीरे बिल्डिंग की तरफ बढ़ने लगे। जर्मन ऑफिसर्स उन्हें ऑब्जर्व कर रहे थे, एक इंडियन रिवॉल्यूशनरी को जो ब्रिटिश एम्पायर को तोड़ना चाहता था। जर्मनी को अपॉर्चुनिटी दिखी उनमें, एनिमी ऑफ एनिमी इज फ्रेंड। सुभाष जी को ऑफिशियल प्रोटेक्शन दी गई और यहीं से शुरू हुआ एक डेंजरस अलायंस।

स्वागत है दोस्तों आपका ब्रेक के बाद। हम सुन रहे थे नेताजी का सफर कि कैसे नेताजी अब जर्मनी पहुंच गए, और जर्मनी पहुंचकर उस समय जैसे कि आप जानते हैं हिटलर इतने फेमस थे कि क्या बताएं। और यही एक चीज है हिस्ट्री की, इतिहास की, जो हमेशा हमारे आंखों में वो चमक पैदा करती है कि हमें वो सब इमेजिन करने लगाती है कि नेताजी हिटलर से कैसे मिले होंगे, हिटलर से क्या बात हुई होगी, हिटलर ने उनको कैसे प्रोटेक्शन दी, उनसे कैसे बात की, नेताजी कितने क्लेवर थे कि उन्होंने हिटलर को कैसे अपनी सारी जो जरूरत थी उसके लिए मनवाया। तो चलिए सुनते हैं कहानी का अगला हिस्सा। नेताजी की हिटलर से पहली मुलाकात कैसे थी, चलिए देखते हैं। एक मैसिव हॉल, नाजी ऑफिसर्स लाइन में खड़े हुए, और सामने एडॉल्फ हिटलर। नेताजी अंदर है, हिटलर ने उन्हें ऑब्जर्व किया। क्या तुम सच में ब्रिटिश एम्पायर को चैलेंज कर सकते हो, हिटलर ने कहा। नेताजी सीधा हिटलर की आंखों में देखकर बोले, इंडिया के 38 करोड़ लोग अगर उठ खड़े हुए तो ब्रिटिश एम्पायर तो गिर ही जाएगा, और ऐसा गिरेगा कि जैसे कभी था ही नहीं। हिटलर ये सुनकर इंप्रेस हो गया, क्योंकि उसने पहली बार किसी कॉलोनाइज्ड नेशन के लीडर में इतना कॉन्फिडेंस देखा था। और फिर क्या, हिटलर इतना इंप्रेस हुआ कि हिटलर और सुभाष जी की बात इतनी चली कि वो जो मीटिंग, जो छोटी सी मीटिंग होने वाली थी, अब वो काफी ज्यादा लंबी हो गई। बहुत सारी बातें हुई, मैप्स बिछाए गए, मैप्स को ऑब्जर्व किया गया, उस पर स्ट्रेटजीज बनाई गई, वॉर कैसे होगा वो डिस्कस किया गया, सारी चीजें बताई गई, अलग अलग तरकीबें, अगर ये प्लान है, अगर ये फेल हुआ तो प्लान बी क्या होगा, प्लान सी क्या होगा, ना जाने कितनी बातें हुई होंगी उस वक्त। पर नेताजी ने एक डिमांड रखी, और वो डिमांड थी, मुझे इंडियन सोल्जर्स चाहिए। वो इंडियन प्रिजनर्स ऑफ वॉर जो ब्रिटिश आर्मी में थे और जर्मनी ने कैप्चर किए थे, नेताजी उन्हें आजादी के लिए लड़वाना चाहते थे। हिटलर ने कुछ सेकंड सोचा और फिर बोला, यू शैल हैव योर आर्मी। और फिर वहां से क्या, आजाद हिंद सेना। जर्मनी के कैंप्स में हजारों इंडियन सोल्जर्स थे, थके हुए थे, टूटे हुए थे, बहुत ज्यादा तो कंफ्यूज भी थे। उन्होंने ब्रिटिश के लिए फाइट की थी, अब प्रिजनर्स थे। एक दिन कैंप में अनाउंसमेंट हुई, एक इंडियन लीडर तुमसे मिलने आ रहा है। सब क्यूरियस थे। नेताजी स्टेज पर चढ़े, उनकी आवाज हॉल में गूंजी, तुम ब्रिटिश के सिपाही नहीं हो, तुम भारत मां के बेटे हो। रूम में सन्नाटा था, किसी की आंखों में आंसू आ गए तो बहुत सारे लोग रो पड़े। नेताजी ने फिर कहा, मैं तुम्हें रोटी नहीं, तुम्हें भूख दूंगा, मैं तुम्हें कंफर्ट नहीं, जंग दूंगा, लेकिन अगर तुम मेरे साथ चले तो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। एक सोल्जर्स खड़ा हुआ, हम आपके साथ हैं नेताजी। और उसके बाद क्या, पूरा हॉल गूंज उठा, जय हिंद के नारे।

0: लगने लगा। यहीं से बनी आजाद हिंद सेना। इंडियन सोल्जर्स को जर्मनी मिलिट्री ट्रेनिंग दी गई। वेपन्स, कॉम्बैट, रेडियो कम्युनिकेशन, एक्सप्लोसिव, मार्च ड्रिलिंग्स, न जाने कितने तरीके की ट्रेनिंग जर्मन सोल्जर्स द्वारा इंडियन सोल्जर्स को मिलती रही। और धीरे धीरे नेताजी ने इतनी बड़ी सेना तैयार की कि जिसका जवाब शायद अब ब्रिटिश के पास नहीं होने वाला था। सुभाष जी हर कैंप विजिट करते थे, हर सोल्जर्स के नाम याद रखते थे। वो सिर्फ लीडर नहीं थे, वो एक होप थे, एक ऐसी होप जो हमें आजादी दिला सकती है। जर्मनी के स्नोवी कैंप में इंडियन सोल्जर्स ट्रेन हो रहे थे। कई लोग पहली बार इतनी ठंड देख रहे थे, हाथ जमे थे, बूट्स टूटे जाते थे, लेकिन नेताजी रोज आते। एक दिन एक सोल्जर बीमार पड़ गया। ऑफिसर ने कहा, रिमूव हिम फ्रॉम द ट्रेनिंग। नेताजी ने मना कर दिया। वो खुद उस सोल्जर्स के पास गए, ब्लैंकेट दिया और बोले, तुम सिर्फ सोल्जर नहीं हो, तुम हिंदुस्तान का फ्यूचर हो। सोल्जर रो पड़ा। उस वक्त सोल्जर को समझ में आ गया था, यह आदमी पावर के लिए नहीं लड़ रहा, ये सच में इंडिया के लिए लड़ रहा है, ये सच में इंडिया के लिए जान देने के लिए तैयार है। नेताजी के इस सफर में एक और खास पहलू था, एक और खास लम्हा, एक और आजादी की मूवमेंट जिसका नाम था आजाद हिंद रेडियो। नेताजी ने जर्मनी में एक पावरफुल वेपन यूज किया जिसका नाम था रेडियो, आजाद हिंद रेडियो। हर रात उनकी आवाज सीक्रेटली इंडिया तक पहुंचती थी। यह आजाद हिंद रेडियो है, लोग छुपके छुपके रेडियो सुनते थे। ब्रिटिश गवर्नमेंट पैनिक में थी क्योंकि एक आदमी थाउजेंड्स ऑफ मील्स दूर होकर भी इंडिया में रिवॉल्यूशन जगा रहा था। सुभाष जी की आवाज में एक अजीब सा कॉन्फिडेंस होता था, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। ये सिर्फ स्लोगन नहीं था, ये एक कसम थी, ये एक ओथ था, ये एक जज्बा था, ये एक प्रेरणा थी। लेकिन कहते हैं ना, सारी चीजें अगर स्मूथली चलने लगे तो आसानी से सब कुछ मिल जाएगा। और फिर एक ऐसा दौर आया कि जिसकी कभी किसी ने कल्पना नहीं की थी। एक मीटिंग में हिटलर ने इंडिया के फ्यूचर पर रेसिस्ट कमेंट किया। सुभाष जी का चेहरा गुस्से से आग बबूला हो गया और उन्होंने तुरंत हिटलर को अपोज किया। कोई भी नेशन इंफेरियर नहीं होता, रूम साइलेंट। नाजी ऑफिसर्स शॉक थे क्योंकि हिटलर को ओपनली चैलेंज करना मौत को इनवाइट करने जैसा था। लेकिन नेताजी किसी से डरते नहीं थे, उनके लिए इंडिया की डिग्निटी सबसे ऊपर थी। हिटलर ने नेताजी की तरफ देखा और सरप्राइजिंगली कहा, गुस्सा नहीं हुआ, वो समझ गए थे यह आदमी किसी का पपेट नहीं बन सकता, यह आदमी अपने देश का गुलाम है, ना किसी ब्रिटिशर का।
1: बल्ली कित है?
2: ओ देश मेरे।

स्वागत है दोस्तों आपका। ब्रेक के बाद हमने देखा कि इंडिया में जैसे ब्रिटिश गवर्नमेंट ने नेताजी को अपने नजरबंद कैद बंद कर लिया, लेकिन नेताजी इतने चालाक थे कि अपना रूप बदल लिया और बदल कर अफगानिस्तान से होते हुए कैसे किसी तरीके से जर्मनी पहुंचे। जर्मनी पहुंचने के बाद उनको हिटलर मिले, हिटलर से कैसे उन्होंने अपनी सेना मांगी, इंडियन सोल्जर्स मांगे, कैसे उनको ट्रेन किया और कैसे फिर एक छोटी नोकझोंक हिटलर और नेताजी के बीच में हुई। लेकिन उस समय का सबसे शक्तिशाली इंसान कहिए या नेता कहिए हिटलर, उसके सामने लोगों की जबान नहीं खुलती थी, पर वहां पे भी नेताजी ने अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया, अपनी हिम्मत दिखाई और बताया कि कैसे उनके लिए देश सर्वोपरि है। अब सोल्जर्स तो मिल चुके थे, लेकिन आगे का प्लान क्या था, तो चलिए देखते हैं कहानी का अगला हिस्सा। जर्मनी यूरोप में बिजी थी। सुभाष जी को समझ आ गया था कि इंडिया तक पहुंचने के लिए जापान बेटर ऑप्शन है। जापान ऑलरेडी ब्रिटिश टेरिटरीज पर अटैक कर रहा था, तो एक इनसेन प्लान बना, जर्मनी से सबमरीन ओशियन क्रॉस करके जापान, वर्ल्ड वॉर के बीच एनिमी वाटर्स के बीच माइंस में वॉरशिप से होते हुए जहां सब मौतें लाशें बिछी होंगी, लेकिन ये सब करना खतरे से खाली नहीं था। पर नेताजी भी आसान काम थोड़ी करते थे, नेताजी वही सब करते थे जो किसी के बस की बात नहीं। सब जगह सिर्फ लाशें ही लाशें बिछी थी, सब जगह पानी, माइंस, बड़ी बड़ी वॉरशिप्स, बम, बारूद, गोली, सब कुछ। ये सारे इम्पॉसिबल चीजों के बीच में सुभाष जी ने काम ले जवाब दिया, आजादी इम्पॉसिबल लोगों को ही मिलती है। और फिर क्या शुरू हुई उनकी सबमरीन जर्नी, डार्क ओशियन, जर्मन सबमरीन, क्लॉस्ट्रोफोबिक टनल्स, नो सनलाइट, नो सर्टेनिटी, हर सेकेंड मरने का डर। एक रात सबमरीन में इमरजेंसी अलार्म बजा, एनिमी शिप इज नियरबाय, लाइट्स ऑफ, कंप्लीट साइलेंस। सब सोल्जर टेंस थे। सुभाष कॉर्नर में क्वाइटली इंडिया का मैप देख रहे थे। एक ऑफिसर ने पूछा, आपको डर नहीं लगता? सुभाष ने, नेताजी ने हल्के से स्माइल दी और कहा, डर तो उसी दिन मर गया था जब मैंने देश को गुलाम देखा। और क्या, नेताजी की ये बात सुनकर ऑफिसर स्पीचलेस रह गया। नेताजी की बस इसी हाजिर जवाबी की जो जो उनसे मिलता वो लोग कायल हो जाते, जो जो उन्हें लोग सुनता वो कायल हो जाते। इतने ज्यादा हाजिर जवाबी थे नेताजी कि आप क्या, अगर एक सवाल हो तो ना जाने उनके पास कितने जवाब। फाइनली सुभाष जी जापान पहुंच गए। यहां उन्होंने इंडियन आर्मी को ज्वाइन किया। INA ऑलरेडी एग्जिस्ट करती थी, लेकिन नेताजी ने उसमें जान डाल दी। थाउजेंड ऑफ इंडियंस ज्वाइन करने लगे, औरतें भी ज्वाइन करने लगी। रानी झांसी का दल बना, एक वुमेन बटालियन। उस वक्त दुनिया के लिए शॉकिंग कंसेप्ट, नेताजी के लिए नहीं। वो कहते थे, आजादी सिर्फ मर्दों का हक थोड़ी है, औरतें भी इसमें हिस्सा ले सकती है, औरतें भी लड़ सकती है। और इसी के साथ उन्होंने बनाई एक बटालियन जिसका नाम रखा रानी झांसी। चलो दिल्ली, सिंगापुर, ह्यूज रैली, लाखों लोग और स्टेज पर नेताजी। उनकी आंखों में जुनून था। उन्होंने हाथ उठाए और कहा, चलो दिल्ली। क्राउड पागल हो गया, जय हिंद जय हिंद जय हिंद के नारे गूंजने लगे, नेताजी जिंदाबाद, नेताजी जिंदाबाद। उस दिन लोगों को लगा आजादी सच में आ सकती है और आजादी बहुत करीब है।
इंडियन नेशनल आर्मी सोल्जर्स बर्मा फ्रंट पर लड़ने लगे, जंगलों के बीच, बारिश में, बीमारियां, बॉम्बिंग्स। ब्रिटिश आर्मी काफी ज्यादा पावरफुल थी, बहुत ज्यादा उनके पास रिसोर्स भी थे, लेकिन इंडियन नेशनल आर्मी के पास एक चीज थी, जुनून। वो जुनून जो नेताजी ने दिया था। एक यंग सोल्जर डाइंग स्टेट में था, नेताजी उसके पास बैठे। सोल्जर धीरे से बोला, हम जीतेंगे ना नेताजी। सुभाष जी की आंखें भर गई, एक दिन तिरंगा जरूर लहराएगा। सोल्जर मुस्कुराया और मुस्कुराते हुए अपने प्राणों की उसने आहुति दे दी। वॉर टर्न होने लगा, जो एक समय स्ट्रॉन्ग था वो जर्मनी वीक होने लगा। जर्मनी वॉर हार रही थी, जापान वीक हो रहा था, इंडियन नेशनल आर्मी को सपोर्ट कम मिलने लगा था, लेकिन नेताजी गिव अप करने वाले नहीं थे। ब्रिटिश ऑफिसर्स भी सीक्रेटली उनके रिस्पेक्ट करने लगे थे, क्योंकि वो सिर्फ अभी पॉलिटिशियन नहीं थे, वो एक कमांडर बन चुके थे। एक ऐसे कमांडर जिन्होंने एक बटालियन में जान फूंक दी। नेताजी की बटालियन में अब लोग पूरी इंडिया से जुड़ने लग गए, और वो आजादी का सपना जो नेताजी ने देखा था, अब उनकी बटालियन में, अब उनकी सेना में मौजूद हर एक इंडियन ने देखा। उनकी सेना की ये खासियत थी, ना उसमें कोई जात, ना कोई धर्म, ना कोई पंथ, कुछ भी नहीं देखा जाता था। देखा जाता था तो सिर्फ एक सपना, वो एक सपना आपके अंदर जिंदा होना चाहिए, और वो सपना था आजादी का। इस तरीके से नेताजी ने अपने कमांडर्स बनाए थे, इस तरीके से नेताजी ने अपनी सेना बुनी थी, इस तरीके से नेताजी ने अपनी सेना को तैयार किया था, और इसी सेना को वो तैयार करके पूरे इंडिया में छोड़ चुके थे, और उन सभी का सिर्फ एक मकसद था आजादी। लेकिन जैसे कि आप सब जानते हैं, हर चीजें अगर अच्छे से ही होने लगे तो फिर तो मजा ही आ जाएगा जिंदगी जीने। एक दिन एक न्यूज आई, न्यूज थी प्लेन क्रैश वाली, ताइवान में अनाउंसमेंट हुआ नेताजी नहीं रहे, लेकिन कोई बॉडी ऑफिशियली कंफर्म नहीं हुई। और तब से मिस्ट्री शुरू हुई। कई लोग मानते थे कि उस प्लेन में नेताजी नहीं थे, और ये कहते थे कि उसी प्लेन से नेताजी सीक्रेटली इंडिया में आ गए। कई लोगों का मानना था कि उस प्लेन में नेताजी थे। ये बात आज भी एक मिस्ट्री है, एक ऐसी मिस्ट्री है जो आज तक नहीं सुनी, लेकिन एक सच आज भी अनडिनाइबल है कि एक आदमी ने ब्रिटिश एम्पायर को हिला दिया। एक आवाज आज भी जिंदा है। इंडिया फाइनली 1947 में आजाद हुआ, लेकिन हिस्ट्री बुक्स में कई नाम लिखे गए, लेकिन जब भी करेज की बात होगी एक नाम हमेशा गूंजेगा, सुभाष चंद्र बोस। वो आदमी जो हिटलर के सामने भी नहीं झुका, वो जो सबमरीन में मौत के साथ ट्रैवल कर रहा था, वो जो सोल्जर्स को होपलेस से उठाकर रिवॉल्यूशन बना गया, वो जो कहता था कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, और वो लाखों लोग सच में उनके लिए जान देने को तैयार हो गए, क्योंकि कुछ लोग हिस्ट्री पढ़ते हैं और कुछ लोग हिस्ट्री लिखते हैं। उन्हीं में से एक नाम था नेताजी सुभाष चंद्र बोस। थैंक यू। सो दोस्तों, ये कहानी सुननी हमने नेताजी की, मेरे सबसे फेवरेट फ्रीडम फाइटर, एक ऐसे फ्रीडम फाइटर की जिनकी न जाने हम कितनी भी कहानियां सुनेंगे तो ऐसा लगेगा कि कम ही है।
एक ऐसे फ्रीडम फाइटर जिनको हम अगर कोई मूवी बने या कितनी भी चीजें बने नेताजी पे, तो हम अगर बैठ कर भी देखेंगे तो हमें ऐसा लगेगा कि हमने अभी तक बहुत कम देखा है। नेताजी के पास उनकी जीवन शैली, उनकी जीवन एक ऐसा जीवन रहा है जिसमें हर दिन पर न जाने कितनी मूवीज, कितनी किताबें लिख सकती थी, क्योंकि उनके इतने आइडियाज, उनके इतना सारा उनके अंदर जुनून, इतना सारा जज्बा था कि उनकी अगर स्पीचेस लोग सुन पड़े तो अगर आज भी लोगों का अगर मोरल डाउन है तो वो मोरल बढ़ जाए। अगर आप हताश है तो आप फिर से झूम उठे, आपके अंदर एक अलग सी ऊर्जा पैदा कर देते थे नेताजी। तो आज के लिए बस इतना ही, ये कहानी में फिर मिलेंगे, कहानियों की गुल्लक में सुनाएंगे आपको फिर से कोई नई कहानी, और देखेंगे कि और क्या नया नया आपके लिए ला सकते हैं, आपको क्या नया सुना सकते हैं। तब तक के लिए सुनते रहिए आचार्य 90 FM एंड खुश होते रहिए, बिकॉज इट्स योर ओन रेडियो। थैंक यू।

हाय एवरीवन, दिस इज मोहित लालवानी. उम्मीद करता हूं कि आपको ये गाना अच्छा लगा. सब्सक्राइब टू द चैनल, नीछे एक बेल आइकन बना हुआ है छोटा सा, उसको अगर आप क्लिक करेंगे तो जितनी भी हमारी अगली वीडियोस हैं वो आपको मिलती रहेंगी. ऐसे प्यार करते रहिए. लॉट्स ऑफ लव. राधे राधे.

फोटोग्राफी इज अ हॉबी दर्शन, नॉट अ करियर. पहले तुम अपना फ्यूचर संभालो, फिर हमारे फ्यूचर के बारे में सोचो.

हेलो एंड वेलकम टू आचार्य 90 FM। मैं आपका होस्ट एंड दोस्त आज शब्बीर लेके आया हूँ कहानियों के गुल्लक। आज हम सुनने वाले एक ऐसी कहानी जिसमें तीन अलग अलग किरदार है और ये कहानी है प्री इंडिपेंडेंस एरा की, यानी आजादी के पहले की, जिसे कि हम सभी लोग जानते हैं। दोस्तों, आजादी हमें आसानी से नहीं मिली है। हमने आजादी के लिए कितना बलिदान दिया है, हमारे पूर्वजों ने कितने शहीद हुए हैं, कितनों ने जेल काटी है, कितनों ने ना जाने कितनी वेदनाएं सही हैं। तो उन्हीं कहानियों में से, उन्हीं गाथाओं में से एक कहानी मैं आज आपके सामने लेके आया हूं। तीन रंग एक खून, एक आजादी की दास्तान। पूरा हिंदुस्तान अंग्रेजों के जुल्म के नीचे दबा हुआ था। गलियों में खौफ था, खेतों में भूख थी और जवानों के दिल में एक ही आग जल रही थी, आजादी। हर शहर में पुलिस की सीटियां गूंजती थी और हर चौक पर गोरा सिपाही खड़ा होता था। किसी के हाथ में लाठी थी, किसी के कांधे पर बंदूक। लेकिन उस अंधेरे के दौर में भी कुछ लोग दिया बनके जल रहे थे और उन्हीं दियों में तीन नाम सबसे अलग चमकते थे, आनंद, अशफाक और अमित। तीन दोस्त, तीन अलग कहानियां, तीन अलग मजहब और घराने, लेकिन एक ही सपना, हिंदुस्तान आजाद होना चाहिए। और इसी सपने के लिए उन्होंने अपनी जवानी, अपनी मोहब्बत, अपना घर और आखिर में अपनी जान तक त्याग दी। ये कहानी है दोस्तों की, मोहब्बत की, बलिदान की और उस मिट्टी की जिसके लिए लोग हंसते हंसते शहीद हो गए। बनारस की सुबह हमेशा से अलग होती थी। गंगा घाट पे मंदिरों की घंटियां बजती थी, कहीं अजान की आवाज थी, कहीं से वंदे मातरम धीरे धीरे हवा में ठहरता था। 1942 का साल था। सुबह के 5 बजे आनंद घाट की सीढ़ियों पर बैठा था। हाथ में एक पुरानी डायरी थी और आंखों में सपने, सफेद कुर्ता, पतला सा शरीर और चेहरे पर अजीब सा सुकून। तभी पीछे से आवाज आई, अरे कवि बाबू, देश आजाद करोगे या घाट पे शायरिया ही लिखते रहोगे? आनंद मुस्कुरा दिया, अशफाक तू सुबह सुबह बकवास की फैक्ट्री खोल देता है। अशफाक हंस पड़ा। अशफाक अली, तेज आंखें, गहरी आवाज, मजबूत कंधे और दिल बच्चे जैसा। उसके कंधे पर एक झोला था जिसमें कुछ कागज और छुपा हुआ क्रांतिकारी पैम्पलेट था। दोनों बात ही कर रहे थे कि पीछे से एक आवाज और आई, तुम दोनों फिर लेट हो। यह अमित था, लंबा कद, माता हमेशा टेंशन से भरा हुआ क्योंकि घर की जिम्मेदारियां उसके कांधों पर जो थी। अमित के पिता बीमार ही रहते थे, घर में माँ और दो छोटे भाई थे, इसलिए अमित बचपन से ही वक्त से पहले बड़ा हो गया था। अशफाक ने उसका कांधा पकड़ा, अरे नेताजी, आज का प्लान बताओ। अमित ने धीरे से कहा, कल रात पुलिस ने दो लड़कों को पकड़ लिया है। अंग्रेजों को शक है कि यहाँ क्रांतिकारी पैम्पलेट बांटे जा रहे हैं। आनंद का चेहरा सीरियस हो गया। नाम, रघु और करीम, तीनों चुप हो गए क्योंकि बनारस में अब सिर्फ दोस्ती या मोहब्बत नहीं चल रही थी, अब हर दिन मौत पास खड़ी रहती थी। हेमा, उसका नाम सुनते ही आनंद की सांसें बढ़ जाती थी। हेमा बनारस की एक स्कूल मास्टर की बेटी थी, बहुत पढ़ी लिखी, बहुत समझदार। उसकी आंखों में अजीब सी हिम्मत थी। वो लड़कियों को पढ़ाती थी और चुपचाप क्रांतिकारियों के लिए संदेश भी पहुंचाती थी। आनंद पहली बार उसे लाइब्रेरी में मिला था। वो हरिश्चंद्र की किताब ढूंढ रही थी। आनंद ने किताब बढ़ाते हुए कहा था, ये लो। हेमा ने किताब ली और पूछा, आपने पढ़ी है? आनंद ने मुस्कुराकर जवाब दिया, 3 बार। हेमा ने पूछा, अच्छी लगी? किताब से ज्यादा उससे पढ़ने वाली अच्छी लगती है, आनंद ने जवाब दिया। और उस दिन हेमा पहली बार शर्माई थी और तब से आनंद हर रोज लाइब्रेरी में जाने लगा। एक शाम हेमा घाट पर आनंद से मिली, हमें मिलना कम कर देना चाहिए, हेमा ने कहा। आनंद का दिल धक से रह गया। क्यों? पुलिस नजर रख रही है, डर लगता है। हेमा ने उसकी आंखों में देखा,
अपने लिए नहीं डर लगता, पर तुम्हारे लिए जरूर लगता है। आनंद धीरे से बोला, अगर आजादी के रास्ते में मोहब्बत आ गई तो? हेमा मुस्कुराई, तो मोहब्बत भी कुर्बान कर देंगे और क्या। उस रात आनंद ने डायरी में लिखा, कुछ लोग जिंदगी में प्यार बन के आते हैं और कुछ लोग वतन बन जाते हैं। अशफाक जब 9 साल का था तब उसके अब्बा की मौत हो चुकी थी। तब से उसकी दुनिया सिर्फ उसकी अम्मी थी। उसकी अम्मी सिलाई करती थी, दिन भर कपड़े सिलती तब जाके घर चलता। अशफाक रात को अक्सर उठकर देखता उसकी अम्मी धीमी रोशनी में आंखों पर कपड़ा रखकर सुई में धागा डाल रही होती। एक दिन अशफाक ने कहा, अम्मी मैं पढ़ाई छोड़ देता हूँ। उसकी अम्मी गुस्से में बोली, एक थप्पड़ दूंगी, तुम पढ़ोगे, बहुत पढ़ोगे, लेकिन पैसे। अशफाक ने कहा, तुम्हारे अब्बा का सपना था मेरा बेटा अफसर बने। अशफाक की अम्मी ने जवाब दिया। अशफाक चुप हो गया, लेकिन वक्त बदलता गया और अफसर बनने का सपना क्रांतिकारी बनने में बदल गया। एक रात अशफाक देर से घर आया, कपड़ों पर खून था। उसकी अम्मी घबरा गई, या अल्लाह क्या हुआ। अशफाक ने झूठ बोला, कुछ नहीं अम्मी, गिर गया था, लेकिन माँ सब समझ जाती है। उसने धीरे से पूछा, अंग्रेजों से लड़ रहे हो ना। अशफाक चुप रहा। उसकी अम्मी की आंखें भर गई। एक बार तुम्हारे अब्बा को खोया है अशफाक, तुम्हें नहीं खोना चाहते। अशफाक ने मां का हाथ पकड़ा, अम्मी अगर हम नहीं लड़ेंगे तो ये जुल्म कब खत्म होगा, हम कैसे चैन से जी पाएंगे, हम कैसे खुले आसमान में सांसें ले पाएंगे, हम कैसे अपनी जरूरतों का सामान आसानी से ले पाएंगे, हम कैसे आसानी से घूम सकेंगे, कहीं आ जा सकेंगे। अशफाक जब ये कह रहा था तो उसकी अम्मी रो पड़ी और रोते रोते कहा, तुम बिल्कुल अपने अब्बा जैसे हो। अमित की दुनिया अलग थी, उसके घर में हर वक्त परेशानी रहती थी। माँ राशन का हिसाब करती, छोटे भाई फीस के लिए रोते, पिता खांसी में खून थूकते। एक दिन माँ ने कहा, बेटा कोई नौकरी देख ले। अमित चुप रहा। उसके पास एक तरफ घर था और दूसरी तरफ देश। उस रात आनंद ने पूछा, तू टेंशन में लग रहा है। अमित ने बस एक बात कही, हर आदमी को आजादी चाहिए, लेकिन घर वाले रोटी भी मांगते हैं। अशफाक ने उसका कांधा पकड़ा, तू अकेला नहीं है अमित। अमित की आंखें भर गई, क्योंकि दोस्ती कभी कभी घर से भी ज्यादा सहारा बन जाती है।

सो स्वागत है दोस्तों आपका ब्रेक के बाद। हम सुन रहे थे तीन दोस्तों की कहानी, अमित, आनंद और अशफाक। कैसे तीनों के घर पे अलग अलग जिम्मेदारियां थी। आनंद अपनी मोहब्बत में गुम था, लेकिन साथ ही साथ उसके दिल में, उसके जहन में, उसके दिमाग में देश चल रहा था। वही दूसरी ओर अशफाक है, जिसके फादर नहीं है, और उसके लिए अगर सब कुछ जो है तो वो उसकी माँ है। तीसरी तरफ अमित है, जिसके घर पे उसके पिताजी अक्सर बीमार रहते हैं, भाइयों के लिए स्कूल देखना है और घर में जरूरतों का सामान भी ज्यादा तरीके से नहीं होता। तो तीन दोस्त तीन अलग अलग कहानियां जी रहे थे, तीन अलग अलग जिंदगी जी रहे थे, पर इन तीन दोस्तों में एक चीज कॉमन थी, वो एक सपना, वो एक आजादी का सपना। तो चलिए सुनते हैं आजादी के लिए अब इन तीन दोस्तों ने क्या किया। अगस्त 1942, महात्मा गांधी ने आवाज उठाई, अंग्रेजों भारत छोड़ो। पूरा देश जल उठा। रेलवे स्टेशन पर नारे लगने लगे, वंदे मातरम, इनकलाब जिंदाबाद। बनारस भी उबल रहा था। तीनों दोस्त अब खुले आंदोलन में शामिल हो गए, पैम्फलेट बांटने लगे, ग्रुप मीटिंग्स करने लगे। पुलिस की मूवमेंट देखना हर दिन खतरा बढ़ रहा था। एक रात अमित ने कहा, कल ट्रेजरी ऑफिस के सामने प्रोटेस्ट है। अशफाक हंस पड़ा, मतलब कल लाठी भी पड़ेगी। आनंद बोला, पड़ेगी तो साथ में पड़ेगी। तीनों हंस दिए, उन्हें क्या पता था ये हंसी धीरे धीरे मौत की तरफ बढ़ रही है। अगले दिन बनारस की सड़कें भर चुकी थी, हजारों लोग, महिलाएं, बच्चे, स्टूडेंट्स, सबके हाथ में तिरंगा। आनंद जोर जोर से चिल्ला रहा था, वंदे मातरम, वंदे मातरम। तभी गोरा ऑफिसर आया और उनपे चिल्लाया, लेकिन भीड़ नहीं हटी। और अगले ही पल लाठी चार्ज, चीखें गूंज उठी, लोग चिल्लाने लगे, लोग भागने लगे। एक सिपाही ने एक बूढ़े आदमी को मारा, अशफाक का खून खोल उठा, उसने सिपाही को धक्का दे दिया। अमित ने आनंद को खींचकर साइड किया, लेकिन तभी एक लाठी आनंद के सिर पर लगी, खून बहने लगा। हेमा दूर से सब देख रही थी, वो भागकर आनंद तक पहुंची। आनंद बेहोश हो चुका था। उस रात हेमा ने आनंद के सर पर पट्टी बांधते हुए पूछा, तुम पागल हो? आनंद धीरे से हंस पड़ा, हां, मर जाते तो? हेमा ने सवाल किया। आनंद ने उसका हाथ पकड़ा, तो याद रखना, किसी ने तुमसे बहुत मोहब्बत की थी। और ये सुनते ही हेमा रो पड़ी। हर आंदोलन में एक गद्दार होता था, बनारस में भी था। किसी ने पुलिस को क्रांतिकारियों के नाम बता दिए, एक एक करके लोग उठाए जाने लगे। एक रात अमित भागते हुए आया, पुलिस को हमारे अड्डे का पता चल गया है, तीनों तुरंत वहां से निकलो। लेकिन तभी गोलियों की आवाज गूंजी, पुलिस पहुंच चुकी थी, सब भागने लगे, अशफाक पीछे रह गया। एक सिपाही ने उस पर बंदूक तानी, तभी आनंद उसके सामने आ गया, भागो अशफाक, गोली चली। आनंद बच गया, लेकिन उसके कंधे को छू गई गोली। तीनों मुश्किल से बच निकले। उस रात पहली बार तीनों को महसूस हुआ, मौत अब बहुत पास आ चुकी है। हेमा के पिता को आनंद और उसके क्रांतिकारी होने का पता चल गया था। उन्होंने गुस्से में कहा, तुम उस लड़के से नहीं मिलोगी। हेमा ने पूछा, क्यों? क्योंकि वो जिंदा नहीं बचेगा हेमा। लेकिन हेमा ने उस वक्त जवाब दिया, जो देश के लिए जीता है उससे प्यार करना गुनाह नहीं है पिताजी। उसके पिता ने हेमा को थप्पड़ जड़ दिया, लेकिन हेमा चुप नहीं रही। वो उस रात आनंद से दोबारा मिली और उसने कहा, आनंद, शायद घर वाले मेरी शादी कहीं और कर दें। आनंद कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, अगर मैं लौटकर ना आया तो?
हेमा की सांसें रुक गई। ऐसी बात मत करो आनंद, आनंद ने धीरे से कहा। क्रांति में लोग कहानियां नहीं लाशें बनकर लौटते हैं। हेमा ने उसकी होठों पर उंगली रख दी। तुम लौटोगे, लेकिन दोनों जानते थे शायद ये झूठ है। एक रेड में अमित पकड़ा गया, पुलिस उसके घसीटकर जेल ले गई। उसके घर में मातम सा छा गया। माँ पुलिस स्टेशन के बाहर रोती रही, मेरा बेटा निर्दोष है, मेरा बेटा निर्दोष है। लेकिन अंग्रेजों को इंसानियत से मतलब नहीं था। जेल में अमित को पीटा गया, नाम बताओ, किसके कहने पर काम करते हो? लेकिन अमित चुप रहा। एक गोरा ऑफिसर ने उसके मुंह पर पानी फेंका, तुम लोग कभी नहीं जीतोगे। अमित खून थूकते हुए हंस पड़ा, फिर इतना डरते क्यों हो हमसे? ऑफिसर ने उसे और मारा। बाहर आनंद और अशफाक अमित को छुड़ाने का प्लान बना रहे थे, लेकिन अमित ने जेल के अंदर ही फैसला कर लिया था, वो टूटेगा नहीं चाहे जान क्यों ना चली जाए। बनारस में क्रांतिकारी एक्टिविटीज अब और ज्यादा तेज हो गई थी। आनंद अंडरग्राउंड काम कर रहा था और अशफाक बॉम्ब बनाने वाले ग्रुप के कॉन्टेक्ट में आ गया था। अमित जेल से छूटकर और ज्यादा खतरनाक बन चुका था। अब तीनों दोस्त सिर्फ दोस्त नहीं रहे थे, वो अंग्रेजों के लिए नाइटमेयर बन चुके थे। एक दिन अशफाक ने हंसकर कहा, अगर हम बच गए ना तो आजादी के बाद साथ में दुकान खोलेंगे। अमित हंसा, तू हिसाब रखेगा? नहीं, मैं ग्राहकों से लड़ूंगा। तीनों जोर से हंस पड़े, लेकिन हंसी के पीछे सच छुपा था। उनमें से किसी को यकीन नहीं था कि वो जिंदा बचेंगे, पर वो हमेशा जिंदा दिल रहना जानते थे, हमेशा हंसना जानते थे, हमेशा अपने देश के लिए जान देने के लिए खड़े रहते थे। उन तीनों के दिल में, उन तीनों के जहन में महज एक ही सपना था, एक ही मिशन था, और वो था आजादी।

ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है दोस्तों आचार्य 90 FM में। आप सुन रहे थे कहानियों की गुल्लक और इसमें कहानी चल रही थी हमारी तीन दोस्तों की। जैसे कि पहले हिस्से में आपने सुना कि कैसे तीन दोस्त तीन अलग कहानियां तीन अलग जिंदगियां जी रहे थे, लेकिन तीनों का मकसद एक ही था, आजादी। और अब धीरे धीरे वो आजादी इस तरह बढ़ चुकी थी कि आनंद अमित और अशफाक को सिवाय आजादी के दूसरा कुछ नजर नहीं आ रहा था। और वो तीनों अपने अपने तरीके से प्लान बनाने लगे थे, प्लान जिससे देश को आजादी मिल सके, युवाओं के दिल में आजादी के लिए जोश जग उठे। तो चलिए देखते हैं आगे की कहानी किस मोड़ पर जाएगी। बनारस में ब्रिटिश ट्रेन आने वाली थी। क्रांतिकारियों ने प्लान बनाया, ट्रेन को उड़ाना है। ये मिशन बहुत डेंजरस था और इस मिशन के लिए तीन नाम चुने गए थे, आनंद, अशफाक और अमित। रात को तीनों घाट पर मिले। चांद आधा था, हवा में अजीब सा सन्नाटा था। आनंद ने धीरे से पूछा, डर लग रहा है? अशफाक बोला, मरने से नहीं। अमित ने पूछा, तो? अशफाक ने आसमान देखा, बस अम्मी अकेली रह जाएगी। सब चुप हो गए। फिर आनंद बोला, हिमा। अमित ने उसका कांधा दबाया और फिर तीनों ने एक दूसरे की तरफ देखा। उनकी आंखों में एक ही बात थी, अगर हम गिरे तो हिंदुस्तान उठना चाहिए। रात के 2 बजे ट्रेन पटरियों पर दौड़ रही थी। तीनों ने एक्सप्लोसिव लगा दिए, लेकिन किसी ने पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया था। गोलियां चलने लगी, भागो, लेकिन अब देर हो चुकी थी। अशफाक ने ट्रिगर एक्टिवेट किया, एक्सप्लोशन हुआ, ट्रेन के डब्बे हवा में उड़ गए। ब्रिटिश एम्यूनिशन जल उठा, लेकिन उसी वक्त एक गोली अशफाक के सीने में लगी। अशफाक, आनंद उसकी तरफ भागा। अशफाक जमीन पर गिर चुका था। उसने मुश्किल से कहा, अम्मी से कहना बेटा डरा नहीं। उसकी सांसें रुक गई। आनंद चीख पड़ा, तभी अमित को भी गोली लगी। वो घुटनों पर गिर गया। आनंद भाग। आनंद कह रहा था, नहीं। अमित हंसा, देश पहले, आनंद आनंद भाग। और उसका सर एक तरफ झुक गया। आनंद की आंखों के सामने दोनों दोस्त मर चुके थे। पुलिस पास आ रही थी। आनंद ने तिरंगा उठाया और जोर जोर से चिल्लाने लगा, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। गोलियों की बारिश हुई और आनंद भी मिट्टी पर गिर गया। उसके हाथ में तिरंगा था, आंखों में हिमा थी और होठों पर आजादी। 15 अगस्त 1947 को हिंदुस्तान आजाद हो गया। हर गली में जश्न था, तिरंगा लहरा था, तिरंगा लहरा रहा था। लेकिन बनारस के एक कोने में तीन माएं रो रही थी। अशफाक की अम्मी ने उसकी तस्वीर छाती से लगा कर रखी थी।
अमित के छोटे भाई फौज में भर्ती हो गए थे और हेमा हेमा ने तो कभी शादी नहीं की। वो हर साल 15 अगस्त को घाट पर जाती, 3 दिए जलाती और धीरे से कहती, तुम तीनों जीत गए। हवा धीरे से चलती जैसे कहीं दूर से 3 आवाजें आ रही हो, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। तो दोस्तों इसी के साथ होता है इस कहानी का अंत। हम सुन रहे थे

और इसी हद को पार कर चुके थे तीन दोस्त अमन, अशफाक और अमित, और तीनों ने बिना हिचकिचाए, बिना कोई संकोच किए, बिना किसी डर के हंसकर शहीद हो गए, हंसकर मौत को स्वीकारा। ना ब्रिटिशों के आगे झुके, ना उनकी गोलियों के आगे झुके, जमीन पर गिर गए, छातियों पर गोलियां खाते रहे, पर दिल में एक ही सपना जिंदा रखे, आजादी। और आखिरकार 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आजाद हुआ। जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों हम सुन रहे थे ये कहानी है, एंड आई होप कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। प्री इंडिपेंडेंस एरा में ऐसी बहुत सारी कहानियां हैं जो न जाने किसी शहर में, किसी गली में, किसी गांव में, हर एक जगह से न जाने सैकड़ों हजारों कहानियां उस समय बनी होगी। कोशिश करेंगे कि कुछ ऐसी कहानियां, कुछ ऐसे पहलू हमेशा लाते रहे और आपके दिल को छूते रहे। तब तक के लिए सुनते रहिए आचार्य 90 FM। मैं आपका होस्ट एंड दोस्त आरजे शब्बीर विदा लेता हूँ आपसे। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए

0: जाने वो कैसे लोग थे जिनके प्यार को प्यार मिला।
1: भाई बहुत खूब गोई बाबू, बड़ा शुक्र नवाज है घर आपका। नौकर चाकर भी शायरी करते हैं।
2: मियां, शायरी सिर्फ दौलतमंदों की जागीर नहीं। तुम कुछ कह रहे थे बरखुरदार, चुप क्यों हो गए? कहो कहो।

0: फिर उस दिन तुमने मुझे वो दर्द भरी नसम क्यों सुनाई? मेरे सोए हुए जज्बात फिर से जाओ,
1: पिछली बातें भूल जाओ मीना।
0: भूला तो रही थी, अपनी जिंदगी को नए सांचे में ढाल लिया था मैंने, दिल को समझा लिया था मैंने, इस दिल को फिर से बेचैन करने के लिए दोबारा क्यों चलाया मेरी जिंदगी में?
2: मैं तुम्हारी जिंदगी से क्या ही कब था, तुम खुद ही चली गई थी मेरी जिंदगी से। वो तुम्हारी पहली गलती थी, उसे सुधारने के लिए अब दूसरी गलती न करो मीना।
0: मैंने कोई गलती नहीं की। हर समझदार औरत को जिंदगी में प्यार के अलावा घरोबार की भी जरूरत होती है, थोड़ी बहुत दौलत के सहारे की भी जरूरत होती है, और यही चीजें पाने के लिए मैंने
2: मिस्टर घोष से ब्याह किया। यानी दौलत के लिए तुमने अपना प्यार बेच दिया।
0: गलत इल्जाम ना दो मुझे। तुमने मेरा प्यार पाया, लेकिन तुम गरीब थे, बेरोजगार थे, जिंदगी में कोई शायरी ही नहीं, प्यार ही नहीं, भूख भी है। जब तुम खुद अपना पेट नहीं पाल सकते थे, उस हालत में मुझसे ब्याह करके मेरा भार उठा सकते थे तुम?
2: उसका मौका ही कब दिया तुमने मुझे? जब इंसान के सर पे जिम्मेदारियां आ जाती हैं, वो उन्हें उठाना भी सीख जाता है। अपने आप को धोखा न दूंगी ना। तुम दौलत चाहती थी, ऊंची सोसाइटी चाहती थी, सामाजिक नाम और इज्जत चाहती थी, और आज वो तमाम चीजें मिलने के बाद भी तुम बेचैन पछता रही, जानती हो? तुमने हमेशा अपना स्वार्थ देखा, इसलिए मेरी जिंदगी से जाते तुमने मेरी खुशी का ख्याल नहीं, और आज तुम अपने पति की खुशी छीना चाहती हो। मीना, जिंदगी की असली खुशी दूसरों को खुश रख के हासिल की जाती है।

0: कैसे लोग थे जिनके प्यार को प्यार मिला।
1: भाई बहुत खूब गोई बाबू, बड़ा शुक्र नवाज है घर आपका। नौकर चाकर भी शायरी करते हैं।
2: मियां, शायरी सिर्फ दौलतमंदों की जागीर नहीं। तुम कुछ कह रहे थे बरखुर्दा, चुप क्यों हो गए? कहो कहो।

0: तो फिर उस दिन तुमने मुझे वो दर्द भरी नसम क्यों सुनाई? मेरे सोई हुई जज्बात फिर से जाओ,
1: पिछली बातें भूल जाओ। मीना
0: भुला तो रही थी, अपनी जिंदगी को नए सांचे में ढाल लिया था मैंने, दिल को समझा लिया था मैंने, इस दिल को फिर से बेचैन करने के लिए दोबारा क्यों चलाया मेरी जिंदगी में?
1: मैं तुम्हारी जिंदगी से गया ही कब था, तुम खुद ही चली गई थी मेरी जिंदगी से। वो तुम्हारी पहली गलती थी, उसे सुधारने के लिए अब दूसरी गलती न करो मीना।
0: मैंने कोई गलती नहीं की। हर समझदार औरत को जिंदगी में प्यार के अलावा घरोबार की भी जरूरत होती है, थोड़ी बहुत दौलत के सहारे की भी जरूरत होती है, और यही चीजें पाने के लिए मैंने
1: मिस्टर घोष से ब्याह किया, यानी दौलत के लिए तुमने अपना प्यार बेच दिया।
0: गलत इल्जाम ना दो मुझे। तुमने मेरा प्यार पाया लेकिन तुम गरीब थे, बेरोजगार थे, जिंदगी में सिर्फ शायरी ही नहीं प्यार ही नहीं भूख भी है। जब तुम खुद अपना पेट नहीं पाल सकते थे, उस हालत में मुझसे ब्याह करके मेरा भार उठा सकते थे तुम।
1: उसका मौका ही कब दिया तुमने मुझे? जब इंसान के सर पे जिम्मेदारियां आ जाती हैं, वो उन्हें उठाना भी सीख जाता है। अपने आप को धोखा न दूंगी ना। तुम दौलत चाहती थी, ऊंची सोसाइटी चाहती थी, सामाजिक नाम और इज्जत चाहती थी, और आज वो तमाम चीजें मिलने के बाद भी तुम बेचैन पछता रही, जानती हो क्यों? तुमने हमेशा अपना स्वार्थ देखा, इसलिए मेरी जिंदगी से जाते तुमने मेरी खुशी का ख्याल नहीं, और आज तुम अपने पति की खुशी छीना चाहती। मीना, जिंदगी की असली खुशी दूसरों को खुश रख के हासिल की जाती है।

कोई बात है। एक लड़की भीगी धागी से, सोती रातों में धागी से, मिली एक अजनबी से कोई आगे न पीछे।

जेनी को तो मैं ऐसे बदल दूंगा कि वो स्टाइल क्वीन कैटरीना कैफ लगेगी। टच मी टच मी टच मी।